0: पे जा है, चपे जा है, सी में लेके थे।
1: अरे बाबा मर गए, अरे न जाने कब से तुझे पड़ी है, देख अब तुमसे संभालने वाले नहीं है। हो गया तेरा इश्क।